ये जायज नहीं। इससे क्या होता है, नफरत होती है कि नहीं माशरे में? अरे मैंने तो ये चाहा कि मैं खरीदूं, उसने ले ली, अब जब वो शख्स जब भी उसके पास वो चीज देखेगा खुश होगा, नाराज तो होगा, नाराजगी से नफरत होगी, नफरत से तदाबुर होगा, फिर वही हसद, फिर यही शर के दरवाजे खुल जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदे बाब किया है हर शर के दरवाजे का। और इसे याद रहे, खरीदो फरो के ताल्लुक से जितने भी मुहर्रम मसाइल हैं, हराम रास्ते हैं, उन सबसे बचें। और सबसे बड़ा रास्ता हराम का है सूद। खरीदो फरो के ताल्लुक से सबसे बड़ा जो हराम रास्ता है, जो शर का दरवाजा है, वह सूद है। खरीदो फरो के ताल्लुक से याद रखें। और आप देखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं यार मैं तो अच्छा हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, हां अगर मैं सूदी कारोबार करता हूं तो उसमें क्या फर्क है? क्या समझते हो, जिसको तुम कर्ज देते हो फिर उस कर्ज की अदायगी में अगर देर हो जाए, उस पर पैसे बढ़ा देते हो, वो आपसे खुश होता है? वो तो मजबूर है लेकिन नफरत से भरा हुआ है, तुम उसे मजबूर कर रहे हो कि वो तुमसे नफरत करे, तुमसे बुग्ज करे और तुमसे हसद करे और तुम्हें यह बद्दुआ दे कि अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को पैसा दिया है जो सूद खाता है और मुझे नहीं दिया, मैं तो सूद खाते नहीं हूं। यह भी जायज नहीं है। उसको पैसा दिया, माल दिया है, इम्तिहान है उस पर, तुम्हें महरूम किया है, तुम्हारे ऊपर इम्तिहान है। हो सकते है माल तुम्हारे पास आता, उसकी जगह तुम होते तो फिर क्या होता? वो हराम खाता है, सूद खाता है, वो जाने उसका रब जाने, उसने जवाब देना है। आपने उसका जवाब नहीं देना, आपने अपना जवाब देना है। आपने क्या तैयार कर रखा है जवाब के लिए? आपने तो हसद किया हुआ है, बोझ किया हुआ, नफरत की हुई, इसका तो तुम जवाब दे हो, जवाब देना है तुमने इन चीजों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब हल क्या है, हम कैसे बचें हसद से, नजस से, बोझ से, तदाबुर से, और एक दूसरे की कोई तकलीफ पहुंचाने से कैसे बचे हम? वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, सारे सब मिलके अल्लाह ताला के बंदे भाई भाई बन जाए। इबादल्लाह, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के मुहताज हो, तुम सब मुश्किल में हो, तुम सब परेशानी में हो, और एक ही मुश्किल कुशा है, एक ही हाजत रवा है, वो तुम्हारा रब है। तुम सब उसके बंदे हो, तुम उसकी बंदगी करने वाले हो, वो वाहिद तुम्हारा रब है। तुम्हें कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो अपने रब से मांगो। इबादल्लाह, कूनु इबादल्लाह पहले फिर इख्वाना है, भाईचारगी बाद में है, पहले मोमिन तो बनो। ईमानी भाईचारा बाद में है, पहले मोमिन तो बनो। और ईमान की बुनियाद तौहीद है, इसलिए फरमाया कूनु इबादल्लाह, अल्लाह ताला के बंदे बनो, माल के बंदे ना बनो, अब्दुल दिरहम अब्दुल दिनार ना बनो, अल्लाह के बंदे बनो। इस माल की कीमत को समझो क्या है, कोई कीमत नहीं है, सब मर जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। कूनु इबादल्लाह, अल्लाह ताला के बंदे बन जाओ, सब मिलके सब अल्लाह ताला बंदगी करने वाले बन जाओ। अगर हम सब आज अल्लाह ताला के बंदे बन जाए, अल्लाह ताला की बंदगी का हक अदा करें, अल्लाह ताला की बंदगी ऐसे करें जैसे कि अल्लाह ताला बंदगी का हक है, तो क्या ये कभी ये हसद और ये बुग्ज़ नफरत तदावर बाकी रहेगा? कूनु इबादल्लाह, और जब हम सब अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, तौहीद को समझेंगे, ईमान को समझेंगे, अपने ईमान को मजबूत करेंगे, कूनु इबादल्लाह इख्वाना, फिर हम भाई भी बन जाएंगे, ये तफरके भी खत्म हो जाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहूदियों के 71 फिरके बने, नसारा के 72 फिरके बने, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, सारे के सारे जहन्नुम में सिवा एक फिरके के। सबक अर्ज की अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा फिरका है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला मा अना अलैहि असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, एक फिरका जन्नत में जाएगा। क्या हम इस रास्ते पर